0: নমস্কার, রেডিও মর্সাংটি 95 মেগাহর্জ র ইন্টারনেট অনলাইন রেডিও মর্সাংটি .org মা বিহানাকো মর্সাংটি সমাচার মা মলক্সমিকো স্বাগত ছ। প্রসারণকো শুরুমা মুখ্য মুখ্য সমাচারকা শীর্ষকহরু।
1: मुख्य समाचारका प्रायोजक
2: आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउन, खरिद बिक्री गर्न तथा राशि अनुसारका एवं अन्य पसलहरूका लागि जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर साथ लमजुङ प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा।
0: कोलसुथर गाउँपालिकामा अझै करिब 6 करोड़ बेरुजी बाँकी। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 74 लाख बढ़ी रूपियाँ फर्स्योट। लमजुङ जिल्ला अदालतद्वारा एक आर्थिक वर्षमा 800 बढ़ी मुद्दा फर्स्योट। वार्षिक फर्स्योट लक्ष्य अनुसार 110% प्रगति। डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ मार्फत गत वर्ष जिल्लामा दर्जन बढ़ी पर्यटकीय पार्क निर्माण तथा स्तर उन्नति। मनाङमा लगातार वर्ष अनावश्यक यात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह। अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेनले 16 वर्षपछि जित्यो विश्वकप फुटबलको उपाधि।

0: सुन्दर मनमोहक र आकर्षक गरगहनाको लागि विगत चार दशक देखि सेवारत अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी शहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी शहर
1: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनका गरगहना
0: हार मंगलसूत्र छड्की तिलहरी मिनी तिलहरी औठी सिकरी टप झुम्का चुरी टिकिया चन्द्रमा किलिप पंखे चन्द्रमा विभिन्न

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
1: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।
2: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम टेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 5

0: అమ్మా మా ఫార్చూన్ అయ్యి వాడరికి ఆర్చెస్ బేగొడ్చిను.
1: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ. नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
2: किन पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा बनाना
0: आई लव यू
3: ए गौथली.
1: समय मध्याह्न 12 बजे दिउँसो 3 बजे र साँझ

0: अनि तयो कागज केमै थिए वा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसरी आइर ब्लक लैर खर्खाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: चर्चै तली लगपर्दि
0: चमलपति न आफैन मोबाइल नम्बर फेरदिया बदेर ब्लक तयाई भिसा आफैन ब्याङ्क दिदिने जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातैन जानकारी अरून योरी थोनी देख्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।